नहीं चाहता है वाक्यों क्या वाक्यों को जाती है निकले क्यों की गावां का कहे वाक्यों उक्षी लाना उक्षी चाला